0: कोलकाता बुक ना करवा का करना 87 ना 870 50 547 87 70 50 547 यार जम
1: हेलो
0: हेलो
1: वो मके हम जा मके
0: हम लाइव का का
1: बस ला बस बस तो मैं उस मान
0: ए फाइव ग्राम बनावा कर यार जम जम
1: मैं जाई
0: नौ नु भी कोई
1: मैं जा
0: बोल ओए मैन भाई
1: मैं बहन जाई
0: जम ब्रेक अल्हम्दुलिल्लाह
1: जम ये ला ला कोई
0: हां
1: अच्छा
0: याद को दुकाना कर दे ओहामा का दे
1: मैं भी इधर कहीं जाए
0: जबरे का जगह का है
1: आज का जो ऑफर किए था ना इंग्लैंड मुझे लगता है इंग्लैंड और इंडिया ने ना उसी में आज का जो ऑफर किए था
0: आंटे
1: मैं लोगों को ले आज लोगों का हम लोगों को ले आज का जो ऑफर किया हुई
0: थी बारु दाखब तेरे जख का जगह तेरे जीरी
1: आ
0: तेरे मुझे ना कोई जीरी चाहो तेर
1: जगह
0: मुझे ना जाए ओ तो वो
1: ओके
0: ओके वाह भाई